मामाशुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड, कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही है एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है। लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।

0: और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ। हाँ, उनका पास थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट। लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे। एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन। उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं। तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike माशूका, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlas from Dhurandhar, The Revenge.
1: Number

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 7.

नंबर 6 पे इस वक्त फुल वेडिंग सीजन हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है ये गाना ब्याह करवा दो जी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन इज इन फुल केओस एनर्जी मोड। ननाल ठाकुर लुकिंग लाइक शी वॉक्ड आउट ऑफ अ यशराज शादी यूनिवर्स। और मिक्का पाजी तो वही कर रहे हैं जो मिक्का पाजी पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं, कमांड इंडियन बारात। देखिए गाना काम कर रहा है, पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 2 स्पॉट्स ऊपर भी आया है, लेकिन इशू ये नहीं है। कुछ गाने सिर्फ मोमेंट कैप्चर करते हैं एंड कुछ गाने वक्त कैप्चर करते हैं, दोनों में फर्क होता है। वैसे व्याह करवा दो जी इज अ फन सॉन्ग, इट्स अ लाउड सॉन्ग, इट्स अ सेलिब्रेटोरी सॉन्ग, लेकिन सच ये है मुझे नहीं लगता कि 3 महीने बाद हम इसे वॉलंटेरिली सर्च करेंगे, क्योंकि म्यूजिक का असली पर्पस वायरलिटी नहीं होता, इमोर्टैलिटी होता है। बार बार सुनने का मन करना चाहिए। जब सिंगर माइक के सामने खड़ा होता है ना, वो ट्रेंड नहीं बनना चाहता, वो याद रहना चाहता है। और फिर कुछ आवाजें आती हैं जो वक्त से ऊपर चली जाती हैं। अरिजीत सिंह, सोनू निगम, कुमार सानू एंड देयर इज आल्सो वन मोर नेम व्हिच इज क्लोज टू माय हार्ट, हरिहरन साहब। बस एक हरकत और माहौल बदल जाता है। तू ही रे, झोंका हवा का, कितनी बातें, और ए आर रहमान के साथ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मेलोडी बना दिया। लेकिन एक सिंगर की असली ग्रेटनेस तब दिखती है जब स्टूडियो प्रोटेक्शंस हट जाते हैं, और हरिहरन साहब ने कई बार ए हैरते परफॉर्म किया है एक लाइव कॉन्सर्ट में, और यार वो गाना नहीं लगता।

0: Isn't it beautiful? इसलिए मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी है नए गाने सेलिब्रेट करना, लेकिन लेजेंड्स को आर्काइव नहीं होने देना। और इस हफ्ते का रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज फ्रॉम ताल। रहमान साहब इज इन डिवाइन मोड, हरिहरन साहब इज इन इम्पॉसिबल फॉर्म।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आए हैं, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाए, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है। क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म्स में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
1: See, पापा, what we want as children, if I can tell you, new people, or any child wants is that if you have, आपने पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो।
1: इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको वही चाहिए।
2: मैं बड़ा ही वही हुआ, मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे ही, वो जो चले गए उधर खा के आ गए, पर वो मजा अलग ही था ना। And a struggle, everyone has to do struggle, you know. ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है। Dude, what a line. David sir, happy retirement. लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत। नंबर वन।

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी पकड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो दिक्कीरो दिक्कीरो
2: दिक्कीरो दिक्कीरो

ऑडियो और गो रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची मिर्ची।

आई लव यू ऑल। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई बजा

0: Avicii, It's Hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi where we bring to you the hottest pop songs of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaane, usme ek nayi entry hai, aur 90s 2000s ka indie pop classic, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki with Gaana number 10, Mika Singh the other rapper ka gaana, gaane ka naam hai Chori. Pichle hafte se apni position par barkarar, Chori is this week on Gaana number 10. Uske baad Mitta Rohr ka Shisha, Mitta Rohr ki composition, unhi ke lyrics, pichle हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स। गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव

तक गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कने का वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है. आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है. पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है. पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था एंड आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है. एक बार फिर से ध्यान से सुनो.

Lots of right answers. It is Mercy by Badshah. Music भी ऐसा है कि कहीं से भी आप सुनते हो and you just know the song. Countdown का जो अगले वाला गाना है, that's a Himesh Reshammiya song. एक नई नवेली एंट्री है. Before we move on and we play the song, Himesh Reshammiya is also exactly that artist जिनके जो गाने हमें पसंद है, जो गाने हमारी नब्स पकड़ के बैठ गए, वो आप कहीं से भी सुन लो, आप एकदम बता सकते हो. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए. इंडी पॉप क्विज ऑफ अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग. मैं आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ. आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है. @RJ कनेगा इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये कौन सा गाना है.

आई नो यू नो द राइट आंसर, साइट वाले को भी बताओ @RJKanika पर, जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। Number

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स, गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए. मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, वी ऑल फील लाइक कि बस यार हो गया, अब कुछ और. एंड दैट्स व्हेन आई लुक फॉर इंस्पिरेशन हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. थिंक अबाउट आर्टिस्ट लाइक हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलेवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रेवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रेवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, और नंबर 5 बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 6.

0: की टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 5.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आए हैं, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर थ्री।

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है। क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
1: See, Papa, what we want as children, if I can tell you, you know, people, yeah, or any child wants yeah. is that if you have, आपने पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो।
1: अरे इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको वही
2: मैं बड़ा ही वही हुआ। मैं जब सांताक्रूज ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे, ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए, पर वो मजा अलग ही था ना। एंड अ स्ट्रगल, एवरीवन हैज टू डू स्ट्रगल। ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है, डूड व्हाट अ लाइन। डेविड सर हैप्पी रिटायरमेंट। लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत। नंबर वन।

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: Only on Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: It's hot. Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi. It's hot.

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

Michi. It's hot.

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: It's hot.
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग स्वीटी, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम्हारी मॉर्निंग्स। और अब वेदर चेक का टाइम आज का है, तो राइट नाउ इट्स अराउंड 60 डिग्रीज फारेनहाइट, पार्टली क्लाउडी है, लेकिन विंड जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रामा ऐड कर रही है। सो ऑल्दो द थर्मामीटर सेज 60, इट्स एक्चुअली फीलिंग लाइक 56 डिग्रीज फारेनहाइट। एंड गुड न्यूज ये है दैट देर इज गोइंग टू बी नो रेन इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, जस्ट लाइक द लास्ट 24 आवर्स। तो नेचर का ये ऑफिशियल तरीका है कहने का कि सरप्राइज वाटरवर्क्स आज के लिए कैंसिल हो चुके हैं। एंड एज द मॉर्निंग रोल्स ऑन, स्काईज आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर अप। सुबह के 5 बजे से क्लैरिटी आनी शुरू हो गई थी, अभी तक वो क्लैरिटी बरकरार है। और अब टेम्परेचर का रेंज देख लेते हैं, इट्स गोना बी रेंजिंग फ्रॉम 55 डिग्रीज टू अ कंफर्टेबल 74 डिग्रीज फारेनहाइट, लेकिन फील होगा 53 से लेकर 72 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में। एंड हियर इज द फन कंपैरिजन, आज का हाई जो है इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज यस्टरडेज हाई। कल तो 77 डिग्रीज फारेनहाइट और आज टच करेगा 74 डिग्रीज फारेनहाइट तक। तो भाई साहब कर क्या रहे हो, लेयर के प्लेयर बनो, साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, और बाहर निकलोगे तो SPF 50++++ लगाना बिल्कुल मत भूलना। और अभी लगाए रखो मिर्ची, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं बोले तो प्रिसला तुम्हारे साथ में हो, इंस्टा और एक्स पर भी तुम्हारे साथ हो सकती हूँ। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

सिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग। अब तुम्हारी कॉफी ठंडी हो जाए उससे पहले हम जल्दी से टाइम ट्रैवलिंग करके आ जाते हैं। सबसे पहले है 1792 में केंटकी ऑफिशियली अमेरिका का 15th स्टेट बना, और फिर 1794 में ब्रिटेन और फ्रांस ने समुन्दर में ऐसी नेवल बैटल की जिसका नाम ही था ग्लोरियस 1st of June। मतलब इवन बैटल्स बैक देन हैड बेटर ब्रांडिंग देन सम स्टार्टअप्स। 1812 में US प्रेसिडेंट जेम्स मैडिसन ने कांग्रेस से कहा था लेट्स टॉक वॉर, और शुरू हुआ वॉर ऑफ 1812। फास्ट फॉरवर्ड टू 1831, एक्सप्लोरर जेम्स क्लार्क रॉस ने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल डिस्कवर किया था, बेसिकली हमारे आज के GPS का ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। 1950 में इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे एस्टैब्लिश हुआ, और ऑनेस्टली हम सब देसीज तो आज भी अपनी मम्मी के सामने बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं, चाहे तुम्हारी एज 55 हो या 15 हो। स्वेटर पहन लो इज अ फॉरएवर मम्मा डायलॉग। 1974 में हाइमलिख मैनूवर पब्लिश हुआ, द टेक्निक दैट हेल्प्स समवन हू इज चोकिंग। देसी वर्जन इसका है दादी माँ के छित्तर। 1980 में CNN लॉन्च हुआ था, दुनिया का पहला 24-hour न्यूज नेटवर्क, और तब से न्यूज का कोई स्नूज बटन नहीं आया है। आज के दिन के कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स भी याद कर लेते हैं, इंक्लूडिंग द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार इन 1984 एंड द ट्रेजिक नेपोलीज रॉयल मैसेकर इन 2001। और आज सेलिब्रेट हो रहा है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो दूध भी पी लेना और पेरेंट्स को कॉल भी कर लेना याद से। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझे याद रखने के लिए मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

एक्टर बॉबी देओल की बात कर रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली ओपन अप किया है अबाउट अ टफ चैप्टर इन हिज करियर. ही रिवील्ड दैट ही वाज ओरिजिनली होपिंग टू बी अ पार्ट ऑफ जब वी मेट दैट इवेंचुअली स्टार्ड शाहिद कपूर एंड करीना कपूर. बॉबी सेड ही वाज गोइंग थ्रू अ रफ फेज प्रोफेशनली एंड नीडेड अ फिल्म लाइक दैट बैक देन. व्हेन इट डिडंट हैपन ही एडमिट्स ही वाज हार्टब्रोकन क्योंकि ये रिजेक्शन उन्हें काफी दिल पर लगा था. उसकी वजह से ही बिकेम अ बेटर एक्टर एंड अ बेटर पर्सन. And honestly, isn't that the most Bollywood thing ever? इंटरवेल तक सब कुछ उल्टा पुल्टा होता रहा है, फिर सेकेंड हाफ में कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. सो इफ समथिंग डजंट वर्क आउट फॉर यू और डिडंट वर्क आउट फॉर यू अभी तक, तो मे बी लाइफ इजंट सेइंग नो, मे बी लाइफ इज सेइंग पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो मे बी लाइफ इज सेइंग पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. वैसे इमेजिन इफ एवरी रोल वॉज एग्जैक्टली एज प्लान्ड, तो बॉलीवुड का गॉसिप कहाँ से आता. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझे फटाफट से फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट इज 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, दिस इज योर होस्ट मिर्ची मॉर्निंग्स शो का नाम है। यहाँ पर मैं बोले तो प्रिसला आती हूँ तुम्हारी मॉर्निंग्स को बोरिंग से सोरिंग बना देने के लिए। अब देखो यार, देसी लाइफ अब्रॉड बहुत ही कमाल की चीज होती है। रात को सोच के सोते हो कि कल से हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे, लेकिन सुबह उठते ही बेगल, चाय और लेफ्ट ओवर गुलाब जामुन का इमोशनल सपोर्ट जो मिल जाता है। अब घर से इतना दूर हो, घर वालों से इतना दूर हो, तो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन गुलाब जामुन से ज्यादा तो मुझ पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ प्योर बैलेंस ऑफ गॉसिप, गपशप, न्यूज अपडेट, म्यूजिक, मस्ती एंड मिर्ची एंड मच मोर। और इस मच मोर में मैं भी आती हूँ। मेरा नाम है प्रिसला, मुझे फटाफट से फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। सोच के रहो, फॉलो करो मुझे जल्दी से, एंड फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग। और अब बारी आ चुकी है सबसे पहले इंडियन केसर मैंगोज हैव बीन स्पॉटेड एट द कॉस्को इन न्यू जर्सी एंड देसीज आर रिएक्टिंग एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। लाइक समवन जिनको फ्री वाईफाई एंड अनलिमिटेड चाय मिल चुकी है। अप्रोक्सीमेटली $20 अ बॉक्स में बिक रहे हैं। द वीडियोज हैव गॉन वायरल प्रूविंग वन थिंग, यू कैन टेक देसीज आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नॉट टेक द मैंगो ऑब्सेशन आउट ऑफ देसीज। नंबर टू पर गूगल इज रिपोर्टेडली सीकिंग अप्रूवल टू रिलीज मिलियंस ऑफ स्पेशली बैक्टीरिया इन्फेक्टेड मेल मस्कीटोज इन पार्ट of the US, and the goal is to help reduce mosquito-borne diseases like dengue and Zika. Basically, mosquitoes are now being hired to fight mosquitoes. And number three per RCB fans, are you okay? Because you are smiling way too much. After RCB's second consecutive IPL title win, Anushka Sharma shared a picture of Virat Kohli rocking a t-shirt that said, "One felt nice, we did it twice." Pretty smooth, I must say. Confident hai and probably impossible for rival fans to read without emotional damage. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me, Priscilla. सुनते रहो मुझे और जाकर मुझे फॉलो भी करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, यू आर हैंगिंग आउट विथ मी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की एंटरटेनमेंट अपडेट में वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग। ग्लोबल पॉप सेंसेशन डुआ लिपा हैज ऑफिशियली टाइड द नॉट विद ब्रिटिश एक्टर कैलम टर्नर इन एन इंटीमेट सेरेमनी इन लंदन सराउंडेड बाय क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड कैन वी जस्ट अप्रिशिएट द फैशन मोमेंट? डुआ लुक्ड स्टनिंग इन क्लासिक वाइट व्हाइल कैलम केप्ट इट शार्प इन अ नेवी सूट। मीनवाइल समवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ फैंस आर प्रिटेंडिंग दे आर टोटली फाइन, completely fine, absolutely fine, adds sad playlist to queue. But hey, love stories are meant to be celebrated and we are sending the happy couple lots of good wishes as they start this new chapter together. And speaking of new chapters, RK Jewels de rahe tumhe real diamond jewelry at real prices. Zero labor charges hai, zero extra charges hai. You're paying only for the true value of gold and diamond, because honestly, the only thing that should be extra is your confidence after wearing the jewelry. Jewelry खरीदने का प्लान है तो RK Jewels पर जाना बनता है। फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स यहाँ पर आने वाले हैं तुम्हारे लिए। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, ऑफकोर्स इंस्टा और एक्स पर भी मैं अवेलेबल हूँ। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे दैट इज जून 1st, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। केक खाओ, कैलोरीज को म्यूट कर दो, भूल जाओ। और आज के दिन किस ग्रुप के साथ तुम एसोसिएटेड हो बता देती हूँ कि सबसे पहले द लेजेंडरी एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन, इनकी आवाज में ना ग्रोसरी लिस्ट भी पड़ी जाए तो वो भी ऑस्कर वर्दी हो जाएगी। ऑल्सो ब्लोइंग आउट कैंडल्स टुडे इज माधवन, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव एक्टर्स। And then we have Heidi Klum, supermodel extraordinaire, and Amy Schumer, proving ki June 1st babies jo hote hain wo stylish ke saath saath funny bhi hote hain. Music lovers, we've got rock legend Ron Wood and Grammy winning singer songwriter Brandi Carlile. And if that wasn't enough, iconic Hollywood legend Marilyn Monroe was also born today. So basically, अगर आज के दिन तुम भी इस धरती पर आए हो तो योर बर्थडे क्रू इंक्लूड्स एक्टर्स, कमेडियंस, म्यूजिशियंस, मॉडल्स एंड ग्लोबल आइकॉन्स। तो आज तुम सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हो, गुपचुप अकेले पार्टी मना रहे हो, जो भी कर रहे हो बर्थडे शाउट आउट्स के लिए मुझे कॉन्टेक्ट करो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। यू कैन सेंड मी योर बर्थडे पार्टी इनवाइट्स एज वेल एज शाउट आउट्स, और साथ साथ में मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड And stay hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and it's time for सोना एंड चांदी का रेट अपडेट only on Mirchi Mornings.
1: Raj Jose wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,700 per troy ounce. $4,700 per troy ounce के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. आज गोल्ड का प्राइस लॉक करके 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, 12 इंस्टॉलमेंट में बिना किसी हिडन फी के 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड राज ज्वेल्स की टीम के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए घर लेके जाएं और 12 किश्तों में पैसे दें. कैसे? आइए राज ज्वेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
0: एंड देयर यू हैव इट, एक्सक्लूसिव गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर तुमने सुना. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्ची तार गानों की बारी है. स्टे ट्यून एंड स्टे
2: रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट. मिर्ची, इट्स हॉट.

खैर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले इमेजिन सेटलिंग इन फॉर अ फ्लाइट टू स्पेन एंड सडनली प्लॉट ट्विस्ट अ यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट हैड टू टर्न बैक आफ्टर द वर्ड BOMB अपीयर्ड ऑन अ ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट ऑन बोर्ड। आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन इट टर्न्ड आउट अ 16-year-old हैड नेम्ड हिज स्मार्ट वॉच BOMB। बेटे को अटेंशन चाहिए था इंस्टेंट ही गॉट एन एविएशन लेवल का टाइम आउट। मॉरल ऑफ द स्टोरी है नेम योर डिवाइसेस वाइजली। नंबर 2 पर डेनमार्क्स प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन हैज स्पार्क्ड कन्वर्सेशन by saying that if she had young children today, she'd rather they smoke than use social media unsupervised. Her point wasn't about smoking being okay. It was about how concerned she is regarding the impact of social media on kids. Basically, she's saying screen time needs a little more supervision. And number 3 per filmmaker Shekhar Kapoor says if teenager cricket sensation Web of Suryavanshi wasn't such an incredible cricketer, he would have cast him in his upcoming reboot of Masoom. And that's your Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hu Prisala tumhare saath mein. Mujhe follow karo Insta aur X pe. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: देयर, मैं हूँ प्रिस्सिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम बैक टू राशि जोन नंबर 2 जहां पर हम बातें करने वाले हैं स्टार्स के बारे में.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: Libra यानी तुला राशि, वर्क मोड एक्टिवेटेड. अ चैलेंज नीड्स योर अटेंशन एंड योर शार्प माइंड इज रेडी फॉर बैटल. टुडेज वाइब इज सीईओ एनर्जी विदाउट द बोर्ड मीटिंग. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 14. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, Big dreams, excellent. The stars are practically handing you a green light. Stop overthinking and start doing. Your future self is cheering already. Lucky color is emerald green. Lucky number is 31. Sagittarius yani Dhanu Rashi, adventure is fun, but don't turn a simple task into mission impossible. Take calculated risks today, not dramatic ones. Tom Cruise already has that job. Lucky color is sunset coral. Lucky number is 6. Capricorn yani Makar Rashi, a conversation you've been avoiding needs to happen. Open up. Honest communication could solve more than months of silent over analysis. Lucky color is midnight blue. Lucky number is 22. Aquarius yani Kumbh Rashi, people may think your new idea is crazy. Good. Most great ideas sound weird before they sound brilliant. Trust your originality. Lucky color is electric violet. Lucky number is 35. Pisces yani ki Meen Rashi, creative magic is flowing today, whether it's art, content, music, business or your secret passion project. Give it your all. The spotlight may be closer than you think. Lucky color is aqua pearl. Lucky number is 9. And there you go, Rashi zone number 2 is done. Mirchi mornings par main hu Priscilla, tumhare साथ में. मेरा हैंडल नेम इंस्टा और एक्सपर है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप टाइम। एंड हियर इज वन लास्ट गॉसिप फॉर टुडे। टाइगर श्रॉफ सिस्टर कृष्णा श्रॉफ रिसेंटली रिवील्ड दैट टाइगर इज सो डिसिप्लिन्ड, इट्स ऑलमोस्ट सुपर हीरो लेवल। अपेरेंटली इवन ऑन हिज बर्थडे ही विल स्मेल द केक, अप्रिशिएट द केक, एडमायर द केक एंड वॉन्ट द केक, बट नॉट ईट द केक। आउच। कृष्णा ने जोकिंगली कहा है कि वो साइकोटिक है। ऑनेस्टली टाइगर एंड आई क्लियरली बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज, बिकॉज इफ आई स्मेल द केक आई एम ऑलरेडी मेंटली ऑन माय सेकंड स्लाइस। सो इमेजिन हैविंग दैट लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल। बट हे, तुम्हारी जो भी चॉइस होगी ना, उसको एडमायर करो और डेडिकेशन पूरा वहीं पर दो, वरना ना तुम खुश होगे ना तुम्हारी चॉइस। सो वेदर इट्स फिटनेस गोल्स, वर्क गोल्स या पार्टनरशिप गोल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम 3 weeks अगो आर नॉट कंसिस्ट। And just like that, another fun morning has come to an end for now. Milungi tumhe kal, same time, same place, same frequency. Mera naam hai Prisala. Sun rahe the tum Mirchi Mornings. Abhi bangers aane wale Mirchidar. Stay tuned and stay hot.

0: स्कूल टाइम में दिस टाइम यूज्ड टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ माय लाइफ। सारा जमाना
1: सारा का दीवाना। मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये टाइम बचपन में गर्मियों की छुट्टियों का टाइम हुआ करता था यार। और हम इस टाइम में ना बचपन में नानी के घर पर ऐश किया करते थे। एंड यू नो, आई रियलाइज दिस कि मुझे पिछले साल तक भी गर्मियां बहुत पसंद थी। एंड देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि ऐसा क्यों, कि गर्मियों में आम के अलावा ऐसा क्या खास है कि वन वुड लव दिस मौसम। और जवाब में अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि ये वो मौसम है जब हम गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय किया करते थे। और तब से लेकर आज तक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉस्टैल्जिया, आई स्टिल लाइक समर्स अंटिल 2023, जब मेरी ओपिनियन बदली और मैं अपने आप से ये कह सकती हूँ कि अब मुझे सर्दियां ज्यादा पसंद है। चॉइसेस बदली हैं तो साथ ही साथ छुट्टियां भी तो बदली हैं यार। बिकॉज बड़े होने के साइड इफेक्ट्स के साथ अब गर्मियों की छुट्टियां ऑफिस जैसी जगह पर नहीं मिलती, और एक डेढ़ महीने की छुट्टियां तो डेफिनेटली एक साथ नहीं मिलती यार। तो आज क्या बोलते हो, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गर्मियों की छुट्टियों में पार्क करते हैं और याद करते हैं उन दिनों को। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पहले साल ना मैं जब अपने घर पे रहा करती थी तो मैं बड़ी कॉशियस रहती थी कि ये मेरा तौलिया है, ये मेरा कंघा है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में ये सब भूल जाया करती थी मैं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गर्मियों की छुट्टियों में ये ट्विस्ट लाइफ में आता था जहां एज अ किड आई यूज्ड टू गो इन माय शेयरिंग एंड केयरिंग जोन, क्योंकि हम इतने सारे कजिन्स एक साथ होते थे कि मेरा चल ही नहीं सकता था बॉस। खाना शेयर करना हो, बेड शेयर करना हो, या चीजें शेयर करनी हो, हम लोग ना सुबह तो एक बार नहाते ही थे, लेकिन एक बार शाम को फिर से नहाते थे और सब एक के बाद एक नहाया करते थे। और शाम को ना मैं ऊपर अपने रूम में जाने से बचने के लिए नीचे आंगन वाले बाथरूम में ही नहा लिया करती थी। और इस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि टॉवल जो है वो मुझे अपने रूम से लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने कजन का टॉवल शेयर कर लिया करती थी यार। एंड तब ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता था कि हाइजीन है, ओ ये मेरा टॉवल नहीं है। और इम्यूनिटी के साथ साथ ना यूनिटी भी बढ़ जाया करती थी। एक प्लेट में से एक साथ खाना खाना, सब कुछ एक साथ करना। नो वंडर हम वो जनरेशन है जिन्हें हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन टाइप मूवीज ना बहुत पसंद आती है। Because we could connect with these films really well, hai ki nahi? Chalo ji, with this coming up the next track, you stay tuned with me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi, it's hot.

0: गोला बर्फ याद है आपको?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और कोई इसे चुस्की बुलाता है तो कोई गोला बर्फ। बुलाए हम इसे कुछ भी, लेकिन इसका स्वाद हर जगह सेम है, आइस एंड सिरप। मुझे याद है हम लोग दिन में जब सब बड़े सो जाया करते थे ना, तब एक डिश लेकर मुल्ला जी की दुकान पर जाया करते थे। और मुल्ला जी की दुकान एक छोटी सी दुकान थी, जो दुकान कम और खिड़की ज्यादा लगती थी, जहाँ उनकी बर्फ घिसने वाली लकड़ी की और लोहे की एक मैनुअल मशीन हुआ करती थी, जिस पर वो बर्फ घिसते और फिर हमारे चॉइस के रंग का शरबत उस पर डालकर गोला बर्फ बनाकर हमें दिया करते थे। हाय, आपसे बात करते करते ना ऑरेंज वाला जो गोला बर्फ था ना, उसका स्वाद आ गया। आपका कौन सा फेवरेट कलर था? क्योंकि बचपन में हम फ्लेवर कम और कलर ज्यादा बोला करते थे। Stay tuned with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गर्मियों की छुट्टियों में दिन में अगर कोई बच्चा सो जाता था ना, तो उसे फोमो ना हो ऐसा कैसे हो सकता था?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गर्मियों की छुट्टियों को याद करते हुए मुझे याद है कि कैसे गर्मियों की छुट्टियों में मैं मजाल है कि दिन में सो जाऊं। हम तो भाई रोज हॉल में सब इकट्ठे होकर कूलर के सामने कैरम खेला करते थे, और दिन का धूप वाला जो टाइम था ना, वो कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। यू नो, स्कूल टाइम में हमारे लिए जरूरी हो जाता था कि स्कूल से आने के बाद तो भाई हमें दिन में सोना ही सोना है, इतना थक जाते थे हम। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में पूरा दिन खेलते रहते थे फिर भी नहीं थकते थे। आई वंडर नाउ कि स्कूल टाइम में थकान खेलने से होती थी या पढ़ने से। पढ़ाई करना मुझे इतना नापसंद था ना कि आज तक ये सवाल खड़े करती रहती हूँ मैं जगह जगह पर। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, अब इधर उधर कान भी लगा लेते हैं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड अब बारी हो चुकी है मान ना मान करो गानों की पहचान। तो कान लगा के इस म्यूजिक के पीस को सुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने इस एक म्यूजिक के पीस में दो म्यूजिक के पीसेस जो है उनको छिपा कर रखा हुआ है। तो दो धुनें जो आपको सुनाई देंगी, आपको उन दोनों धुनों के गाने जो है वो गेस करने और मुझे डीएम करना ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। तो 1 2 3 रेडी, हियर वी गो।

फटाक से बताओ ये दो धुने कौन सी फिल्म की है। मिर्ची सारा इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, डीएम करो अपना नाम, अपनी सिटी एंड ऑफ कोर्स दोनों गानों के नाम। इसी के साथ मैं करती हूँ अपना काम, कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot.

0: राजपाल से वो चीज है जो आज भी चख लिए जाए ना तो सीधा गर्मियों की छुट्टियों में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मुझे पता नहीं कि आपने फालसों के बारे में सुना है कि नहीं सुना है, और अगर नहीं तो आई मस्ट लेट यू नो कि ये ना एक बेरी फ्रूट होता है जो गर्मियों में ही मिलता है। इनफैक्ट मिलता था, अब तो इसे देखे ही जमाने हो गए यार, लेकिन 90s तक ये ठेले पर मिला करते थे और गली में से ना भैया आवाजें निकालते हुए जाते थे कि फालसे वाले ही। भाई साहब, हम सब अपने दो दो रुपए लेकर जो भागते थे ना फालसे लेने के लिए, और वो पेपर का एक कोन बनाकर उसमें फालसे दिया करते थे और ऊपर से काला नमक छिड़का करते थे। ओए होए होए होए होए, वो वाले फालसों का स्वाद ना एक तरफ और दुनिया में कहीं की भी स्ट्रॉबेरी एक तरफ। बचपन की खट्टी मीठी यादों की तरह ना ये फालसे भी खट्टे मीठे ही हुआ करते थे। बस बस बस बस यार, अब आगे नहीं बोलूंगी, कहीं इन यादों में खोकर रो ना दूं। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आज अगर मेरी कोई हॉबी है ना तो वो मेरी हॉबी है, लेकिन बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अगर कोई हॉबी होती थी ना तो वो हमारी हॉबी होती थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गर्मियों की छुट्टियों के दिनों को याद करते हुए आई रिमेम्बर, अगर कोई एक अपनी हॉबी बताता था तो वो हम सब की हॉबी हो जाया करती थी बॉस। लाइक आई रिमेम्बर मेरे एक कजन ने चूजे यानी कि मुर्गी के बच्चे पालना शुरू किया। वो दो चिक्स लेकर आया था और वो 2x12 हो गया था क्योंकि हर एक कजन ने दो दो चूजे खरीदे। एंड फिर सून मेरी नानी के घर में एक मिनी पोल्ट्री फार्म बन गया था। हमारा पूरा दिन ना उन चूजों की देखरेख और उनके साथ खेलने में जाता था। हमने ना उनको घर के आंगन में जो एक छोटा सा बाथरूम था जिसको कोई यूज नहीं किया करता था वहाँ रखा हुआ था बिल्ली के डर से। तो दिन भर उनके साथ खेलने के बाद हम उन्हें रात में बंद कर दिया करते थे। लेकिन फिर एक सुबह ऐसी आई हमारी लाइफ में जो कि बड़ी भयानक सुबह थी यार। जब हम सबको मामा ने उठाया और हम छत पर से उठ के सीधे नीचे पहुंचे तो देखा कि बिल्ली ने हमारे सारे चूजे मार दिए थे। किसी ने बाथरूम का दरवाजा रात में ढंग से बंद नहीं किया और बिल्ली इस तरह अंदर पहुंच गई। और बॉस वो दिन क्या वो हफ्ता ही हम सब बच्चों के लिए बहुत ही भारी रहा। हम इतना रोए कि बस उसके बाद हमें घर के बड़ों ने चूजे पालने से मना कर दिया था क्योंकि वो इमोशनल मैच्योरिटी जो आज है ना वो तब नहीं हुआ करती थी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

0: आज के टाइम पर हम छत पर जाना भूल गए हैं, तो छत पर सोने की तो कौन ही बात करेगा। सारा जमाना
1: सारा का दीवाना। मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। लेकिन इस छत पर सोने वाली बात को तो मैं छेड़ कर ही रहूंगी यार, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों की। और गर्मियों की छुट्टियों में ना हम रोज रात में छत पर सोया करते थे। छत पर सोने से पहले शाम को छिड़काव करना और फिर अंधेरा होते ही बिस्तर लगा देना, ये रोज का काम हुआ करता था। और बिस्तर लगाने की ड्यूटी हुआ करती थी जो रोज बदलती थी। लेकिन ये ड्यूटी ना किसी भी बड़े भाई बहन की नहीं होती थी, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी हम छोटों में बांट दिया करते थे ना। आज एसी की ठंडक ठंडक तो होती है, लेकिन सिर्फ स्किन के लिए, क्योंकि दिल को ठंडक तो छत पर सोने पर चलने वाली हवा ही दिया करती थी यार। और आपने एक बात और नोटिस की कि चांद तो हमेशा से ही धरती से दूर है, लेकिन छत पर सोते थे तो चांद दूर होकर भी पास हुआ करता था। हम रोज चांद को देखते थे, उसके साइज को डिस्कस करते थे, कभी बादलों के डिजाइन डिस्क्राइब किया करते थे। लेकिन अब तो आसमान की तरफ माइंडफुली देखना भी याद नहीं रहता है। उफ, ये अडल्टिंग वाली बिजी लाइफ। लेकिन आज जब ये बात हुई है ना, तो आज तो मैं छत पर जाकर कुछ देर चांद से बैठकर बात करके आऊंगी। जमाने हुए यार कि चांद की हालचाल ही नहीं पूछे। चलो जी, नाउ विद दिस कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना
1: मिर्ची 90s कैसेट।
2: वेल, गाने की बोली कहते हैं कि आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, लेकिन हम दिल दे चुके सनम में जब ऐश्वर्या राय की आंखें देखी, ओए होए, इन गुस्ताखियों को कोई कैसे माफ कर सकता है यार। एंड स्पेशली इस गाने में उनकी आंखों ने जो डांस किया है ना, ओए होए होए होए होए होए होए, पूरा इंडिया अपना दिल हार बैठा होगा उनकी आंखों को देखकर। बाय गॉड, बट कुछ भी कहो, इस्माइल दरबार साहब का जो म्यूजिक है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस गाने के ये बोल कि काजल का एक तिल तुम्हारे लबों पे लगा दूं, चांद और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं, पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं। आई मीन, ये डायलॉग मोहब्बत में उस डायलॉग पर तो भारी पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। चलो जी, नाउ विद दिस गाना फॉर योर 90s की प्लेलिस्ट, इसे सजेस्ट करते हुए इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ढूंढ लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ यही अगला गाना आ रहा, स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Michi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे, फिर तू ले जा अपने अंग...

नरगिस जी बस 6-7 साल की थी जब उन्होंने मिड 30s में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं ये वो सैड स्टोरी नहीं है कि फैमिली ने फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से छोटी सी बच्ची से फिल्मों में काम करवाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट नरगिस जी की फैमिली जिसमें मेनली उनकी मम्मा थी, दे वर क्वाइट वेल टू डू। उनकी मदर जद्दन बाई जी एक क्लासिकल सिंगर थी और एक म्यूजिक कंपोजर भी। तो इस तरह के इंडिपेंडेंट कला से भरे माहौल में नरगिस जी पली बड़ी, उनको फिल्म ऑफर्स भी आने शुरू हो गए। उन्होंने कुछ 6-7 फिल्मों में एज चाइल्ड एक्टर काम किया होगा जिसमें कहीं उन्हें बेबी नरगिस कहीं बेबी रानी नाम से क्रेडिट दिया गया। इनफैक्ट उनकी फर्स्ट फिल्म एज लीड एक्ट्रेस भी उन्होंने तब की व्हेन शी वाज जस्ट 14। 1943 में ये फिल्म आई थी तकदीर, जिसमें उनके एक्टर थे मोतीलाल जी। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, आप कभी देखना। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सुंदर सा गाना सुनेंगे पिक्चराइज्ड ऑन नरगिस जी आवारा फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

40s और 50s में नरगिस जी ने ये जो सारे सोफिस्टिकेटेड स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वाले किरदार निभाए हैं ना, इन्होंने काफी नेचुरली निभा लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, जिसकी एक वजह शायद ये भी थी कि वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही थी, बोल्ड, फेयरलेस, फाइस्टी। वो अपने जितनी भी मीटिंग्स होती थी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ वो खुद करती थी, अपने करियर के डिसीजंस वो खुद लेती थी। उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी, कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं था जो उनके करियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। और इसका क्रेडिट जाता है नरगिस जी की मदर जद्दन बाई जी को, जो खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, और उसी तरह की परवरिश उन्होंने नरगिस जी को भी दी। आपको पता है नरगिस जी एक बहुत ही बढ़िया स्विमर थी, इनफैक्ट वो उन पहली मेनस्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक थी जिन्होंने स्क्रीन पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना 1951 की आवारा फिल्म में। उन्हें क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था, अच्छा साड़ियां पहनने का भी बहुत शौक था, वो भी लाइट कलर की साड़ियां। ज्यादातर लड़कियों को एक और जो शौक होता है रोड साइड पे गोलगप्पे खाने का, वो भी उनको था। वैसे तो नरगिस जी की बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेज रही हैं कई फिल्मों में, लेकिन अगर आपने चोरी चोरी फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फिलहाल उसी फिल्म का एक गाना यहाँ पर हम सुनेंगे, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।

0: एक अच्छी खासी हंसती खेलती गाती सही जिंदगी को तबाह करने में क्या लगता है, एक गलत रिलेशनशिप? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मिड 30s में एज चाइल्ड एक्टर नरगिस जी ने अपने करियर की शुरुआत की। मिड 40s तक आते आते जब वो टीनेजर थी वो काफी पॉपुलर हो गई थी एंड देन शी मेट राज कपूर साहब 1947 में। साथ में फिल्में करना शुरू किया, प्यार हो गया, वादे हो गए। ऐसा सुनने में आता है कि राज कपूर साहब ने उनको शादी का कमिटमेंट दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो ही इस कमिटमेंट से कतराने लग गए। इधर नरगिस जी काफी सीरियस हो गई। ऐसा भी सुनने में आता है कि वो वकीलों से मिली, मिनिस्टर्स तक से मिली, ये पता करने के लिए कि क्या मैरिज एक्ट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं कि राज कपूर साहब से उनकी शादी हो जाए, क्योंकि राज कपूर साहब ऑलरेडी मैरिड थे तब तक। ऐसा भी सुनने में आता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से नरगिस जी ने काफी अच्छे फिल्म ऑफर्स और काफी पैसा भी गंवा दिया। बट 1956 तक आते आते उनको ये रियलाइज हो गया कि इस रिलेशनशिप का एंड ट्रैजिक होने वाला है, और तब वो राज कपूर साहब की जिंदगी से और आरके फिल्म से बाहर निकल गई।
1: और अच्छे के लिए निकली ना। उसके बाद उन्होंने मदर इंडिया फिल्म की, जहाँ वो सुनील दत्त साहब से मिली।
0: वो क्या डायलॉग था, इफ इट इज नॉट दी हैप्पी इट इज नॉट दी एंडिंग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

नरगिस जी, व्हाट अ स्प्लेंडेड करियर एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हालांकि शी वॉज जस्ट 51 ईयर ओल्ड व्हेन शी पास्ड अवे, पर क्या जिंदगी जी उन्होंने, क्या इंसान, क्या एक्ट्रेस, क्या वाइफ, क्या मदर, क्या सोशल वर्कर थी वो। उन्होंने एज चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की एंड शी टर्न्ड आउट टू बी दिस बोल्ड, फियरलेस, फाइस्टी, इंडिपेंडेंट वुमन थैंक्स टू हर अपब्रिंगिंग। उन्होंने अपनी लाइफ, अपने करियर के मेजरली डिसीजंस खुद लिए, कुछ थोड़े उल्टे पड़ गए, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामलों में अपनी चलती कहाँ है। 8-9 साल के उस अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप से वो बाहर निकली एंड शी डिड दिस कल्ट फिल्म मदर इंडिया, जहाँ पे उनको जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला सुनील दत्त साहब के रूप में, ट्रू लव। इस फिल्म के लिए नरगिस जी को वैसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। और उनकी जो लास्ट फिल्म थी ना 1967 की रात और दिन, उसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

वाइफ मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकड हस्बैंड फाइटर वाइफ। बीवी बिगड़े शौहर अकड़े, रोज के झगड़े रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े।

खोली, हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार? मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले हे हे, फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चार ये

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

0: सुमन कल्याणपुर जी, इनका जन्म 1937 में ढाका में हुआ था, जहाँ पे इनके फादर की जॉब थी, वो बैंकिंग में थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसी जॉब के चलते 1943 में इनकी फैमिली बॉम्बे आ गई, जहाँ पे अपनी पढ़ाई के साथ साथ सुमन जी ने संगीत सीखना शुरू किया। उन्हें पेंटिंग का भी बहुत शौक था। सुमन जी ने पहली बार कहीं पर पब्लिक सिंगिंग की तो वो थी ऑल इंडिया रेडियो के लिए। दिस हैपेंड इन 1952, जब वो 15 साल की होंगी। और पहली फिल्म जिसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड किया था वो एक मराठी फिल्म थी, ये 1953 में हुआ। और वो पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया ये थी 1954 की मांगू फिल्म। लेकिन जो फिल्म पहले रिलीज हुई वो थी दरवाजा, इसमें सुमन जी ने काफी गाने गाए थे। ऐसे आपको पता है सुमन जी के हस्बैंड रामानंद कल्याणपुर ये बहुत सपोर्टिव थे। जब जब ये रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी उनके हस्बैंड भी उनके साथ रिकॉर्डिंग सेशंस में जाते थे। हाउ अडोरेबल इज दैट। इसी बात पे सुमन जी का गाया हुआ ये अडोरेबल सॉन्ग सुनेंगे, साथ में मोहम्मद रफी जी की आवाज भी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने ये गाना लिखा है। 1967 की फिल्म फर्ज से है ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: तुमसे

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on

बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि सुमन कल्याणपुर जी की जिस तरह की आवाज थी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज या सक्सेस उनको नहीं मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसकी मेन वजह ये थी कि उनकी आवाज लता जी की आवाज से बहुत मिलती जुलती थी। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि रेडियो पे गाने सुनाने वाले लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि ये लता जी की आवाज है या सुमन जी की आवाज है। कई बार फिल्म के रिकॉर्ड पे भी गलत नाम लिखा होता था। इस वजह से सुमन जी कहीं ना कहीं लता जी की ऑल्टरनेटिव या उनकी रिप्लेसमेंट बन गई कि जो गाने लता जी नहीं गा पाती थी या मना कर देती थी वो गाने फिर सुमन जी गाती थी। एक ऐसा बहुत लंबा फेज था जब लता जी ने रफी साहब के साथ गाने नहीं गाए क्योंकि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उस टाइम सुमन जी ने रफी साहब के साथ बहुत सारे डुएट्स रिकॉर्ड किए। ये भी सुनने में आता है कि कुछ पॉलिटिक्स भी खेली गई थी जिस वजह से कई अपॉर्चुनिटीज सुमन जी तक नहीं पहुंचती थी। उनकी जिस तरह की आवाज है वो बहुत सारे सोलो सॉन्ग्स डिजर्व करती थी लेकिन इतने सोलो सॉन्ग्स उन्होंने नहीं गाए। खैर उन्होंने कभी इस बात के लिए कोई एलिगेशन किसी पे नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं की। उनका कहना था कि उनको जो मौके मिले वो उससे खुश थी। सुमन जी और रफी साहब का गाया हुआ ये क्लासिक हिट गाना सुनेंगे ब्रह्मचारी फिल्म से पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची के साथ।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

पुनर्जन्म की कहानी वाली फिल्म महबूबा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मुझे ना ये पिछला जन्म, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन वाली जो थीम्स होती हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। एंड सम ऑफ द मूवीज टू वॉच आउट, अगर आपने नहीं देखी हैं ये पिछले जन्म वाली पुरानी हिंदी फिल्में, तो 1949 की महल फिल्म है, 1958 की मधुमती, वेल ओम शांति ओम फिल्म का जो क्लाइमेक्स है ना वो मधुमती के क्लाइमेक्स से ही इंस्पायर्ड है, देन 1968 की नीलकमल, 1967 की मिलन, एंड हाउ टू फॉरगेट 1980 की कर्ज। वैसे राजेश खन्ना साहब और हेमा मालिनी जी, इन्होंने दो ऐसी मूवीज में साथ में काम किया, एक तो जिसका गाना हमने अभी सुना था महबूबा का, और एक कुदरत फिल्म में भी ऐसी ही थीम थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

नीरज साहब का लिखा हुआ गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कवि नीरज हैं, गोपाल दास नीरज जी। इनकी पोएम्स, इनकी शायरी बहुत अच्छी लगती है भाई मुझे। इनकी एक गजल है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू है रान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा, नीरज तू कल यहाँ न होगा उसका गीत विधान रहेगा। नीरज साहब का लिखा हुआ एक और बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only

0: गलत बात है ये, बहुत गलत बात है जी, बहुत गलत बात है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: ये इतना क्लासिक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात फिल्म का 1974 का ये गाना उस साल गीत माला में भाई और बहनों एनुअल लिस्ट में ये नंबर 11 पे था।
1: और कभी कभी मुझे लगता है उस टाइम रोमांटिक गाने इतने पॉपुलर नहीं होते थे, मतलब होते थे लेकिन ऐसे टॉप में नहीं आते थे लिस्ट में।
0: उस साल देखिए आप नंबर 1 गाना कौन सा था उस गीत माला में, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, सैड सॉन्ग। सैड में भी मेलेडी होती है, देखो अच्छे होते हैं वो गाने। अच्छा नंबर 2 पे जय जय शिव शंकर आपकी कसम का मस्ती वाला गाना, नंबर 3 पे भी मस्ती वाला गाना झूठ बोले कौवा काटे बॉबी फिल्म का, और यू नो सैड सॉन्ग्स लाइक तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये सब ये चुरा लिया है तुमने गाने से ऊपर रहे हैं उस एनुअल लिस्ट में। और एक और अति सुंदर रोमांटिक गाना जो हम सुनने वाले हैं वो तो उस साल के टॉप 30 में भी नहीं था, सत्ते पे सत्ता का दिलबर मेरे। अभी सत्ते पे सत्ता का दुखी पे दुखी हो ये शायद नंबर 16-17 पे था, लेकिन दिलबर मेरे तो था ही नहीं टॉप 30 में। गलत बात है, गलत बात है, हम नहीं मानते, इतना सुंदर गाना ये। खैर फिलहाल गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली

22 साल का एसोसिएशन और यूं ही खत्म हो गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक कंपोजर्स शंकर जयकिशन और राज कपूर साहब की। भाई 1949 से 1971 तक इनका एसोसिएशन रहा और इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने बनाए गए। लेकिन 1971 में जब जयकिशन जी की डेथ हो गई, तब ऐसा सुनने में आता है कि लता मंगेशकर जी, इन्होंने राज कपूर को साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे शंकर जी से प्रॉब्लम है और अगर वो म्यूज़िक बनाएंगे तो मैं आपकी फिल्मों में गाना नहीं गाऊंगी। और इसके बाद राज कपूर साहब ने शंकर जी से खुद को थोड़ा डिस्टेंस कर लिया और अपनी फिल्मों में दूसरे म्यूज़िक कंपोजर्स को लेना शुरू कर दिया। इस एसोसिएशन की सॉर्ट ऑफ लास्ट फिल्म जो हम बोल सकते हैं वो थी 1971 की कल आज और कल। ये कल आज और कल की फिलॉसफी फिल्म में तो डिफरेंट थी, लेकिन रिलेशनशिप्स एसोसिएशंस के बारे में सोचा जाए तो भी कितनी एप्ट है कि कल क्या रिलेशनशिप था, आज क्या रिश्ता है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: नाना,
0: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

आने वाले के नाम पे कुछ लाइंस याद आ रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आरजू लखनवी नाम के शायर हैं, उनकी एक नज्म के शेर हैं। आंख से दिल में आने वाला, दिल से नहीं अब जाने वाला, घर को फूंक के जाने वाला, लौट के नहीं फिर आने वाला, आंसू पोंछ के हंस देता है, आग में आग लगाने वाला, दी थी तसल्ली ये किस दिल से, चुप न हुआ चिल्लाने वाला। ये सुनिए, ये बहुत ही बढ़िया है। डाल रहा है काम में मुश्किल, डाल रहा है काम में मुश्किल, मुश्किल में काम आने वाला। ओए होए, आप भी जरा हमारे थोड़ा काम आइए, मुस्कान को कान तक ले जाइए और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

आइकॉनिक कॉम्पोजिशन खयाम साहब की मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई खयाम साहब को 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक कभी कभी फिल्म के लिए, और फिर तीसरा उमराव जान फिल्म के लिए जिसका गाना हम सुनने वाले हैं। वैसे उमराव जान के म्यूजिक के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, मिलना ही था, इतना बेहतरीन म्यूजिक है। और इसका म्यूजिक कंपोज करने के लिए ना खयाम साहब ने बकायदा उस टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड में ये कहानी बेस्ड है, उसकी किताबें पढ़ी थी, अच्छे से रिसर्च वगैरह की थी, उसके बाद इसका म्यूजिक कंपोज हुआ था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रानी जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात होर सी
0: पर 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

Let's go crazy.

0: Avicii. It's hot.
1: Mirchi, it's hot.